कहानी बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज़ थे। 98.1 Better Music Hot FM.